थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

0: स्थितोन दुःखेन
1: यस्मिन् स्थितोन दुःखेन
0: गुरुणापि विचाल्यते
1: गुरुणापि विचाल्यते
0: तं विद्या दुःख संयोग
1: तं विद्या दुःख संयोग
0: वियोगं योग संज्ञितं
1: वियोगं योग संज्ञितं
0: सनिश्चयेन योक्तव्यः
1: सनिश्चयेन योक्तव्यः
0: योगो निर्विण्ण चेतसा
1: योगो निर्विण्ण चेतसा
0: संकल्प प्रभवान कामान
1: संकल्प प्रभवान कामान
0: त्यक्त्वा सर्वान शेषतः
1: त्यक्त्वा सर्वान शेषतः
0: मनसैवेन्द्रिय ग्रामम
1: मनसैवेन्द्रिय ग्रामम
0: विनियम्य समन्ततः
1: विनियम्य समन्ततः
0: शनै शनैरुपरमेत
1: शनै शनैरुपरमेत
0: बुद्ध्या धृति गृहीतया
1: बुद्ध्या धृति गृहीतया
0: आत्मसंस्थं मनः कृत्वा
1: आत्मसंस्थं मनः कृत्वा
0: न किञ्चिदपि चिन्तयेत्
1: न किञ्चिदपि चिन्तयेत्
0: यतो यतो निश्चरति
1: यतो यतो निश्चरति
0: मनश्चञ्चलमस्थिरं
1: मनश्चञ्चलमस्थिरं
0: ततस्ततो नियम्येतद्
1: ततस्ततो नियम्येतद्
0: आत्मन्नेव वशं नयेत्
1: आत्मन्नेव वशं नयेत्
0: प्रशान्तमनसं हेनं
1: प्रशान्तमनसं हेनं
0: योगिनं सुखमुत्तमं
1: योगिनं सुखमुत्तमं
0: उपैति शान्तरजसं
1: उपैति शान्तरजसं
0: ब्रह्म

सूर्यमाला का केंद्र बिंदु है। ऐसे ही तेजस्विता के गुण से संपन्न व्यक्ति भी जन समुदाय के आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। मुखमंडल पर कांति व चमक होना देही की शारीरिक तेजस्विता का नाम है। विलक्षण बौद्धिक क्षमता से उत्तमता के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होना बौद्धिक तेजस्विता है। बोल में सत्यता की शक्ति भर के वाणी प्रभावशाली बनाना और सुनने वालों से वाणी का लोहा मनवा लेना वाणी की तेजस्विता है। परीक्षा में खुद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किसी भी छात्र को बुद्धि की तेजस्विता की आवश्यकता पड़ती है। बड़े ते बड़ी सभा को केवल तेजस्वी वाणी की जादुई शक्ति से ही प्रभावित कर अपने वश में किया जा सकता है। शरीर चाहे बहुत अधिक सुंदर ना भी हो, लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति के चेहरे पर सदा आत्मिक तेज चमकता रहता है। चाहे व्यक्ति के पास रुपए पैसों से पाई चमक धमक ना हो, लेकिन चरित्र में नैतिक मूल्य हो तो वह कर्मों से तेजस्वी बन जाता है। ऐसा तेजस्वी ही उज्जवल समाज का निर्माता साबित होता है। सच्ची तेजस्विता कर्मठता में है, जो कर्म देश समाज और परिवार के हित यानी कल्याण के लिए समर्पित होता है, वो मानव को जनहित करने वाला सच्चा तपस्वी बना देता है। आसमा में एक सूर्य तपता है और सारी जीव सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही मानवता और लोक कल्याण के कार्य में तपने वाला पुरुष तेजस्वी बन जाता है, जिसके विचार वाणी उज्जवल और कर्मठता भरे हो, उसके कर्मों से तेजस्विता की किरणें फूट पड़ती है, जो हर मन में उमंग और आत्म जागृति का ज्वार पैदा करती है। अतः तेजस्वी बनिए और अमर कीर्ति पाइए, ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं।

0: वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: उदाहरण बताया और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नीमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
4: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
5: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि नए साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
6: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
8: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुनीश।
2: देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी 90.4 एफएम वेणुधुनि के एलई कंसू पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनि 90.4 एफएम के एलई कंसू।
9: KLE Pharmacy College, Umbalgavi, 2026-27 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ, ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ. ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ನ್ಯಾಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu.

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में बरसात के मौसम में होने वाले रोग और आयुर्वेदिक उपचार क्या है, इसके ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर ओजस्विनी रेड्डी, जो KLE BM कंकनवाड़ी आयुर्वेदा कॉलेज और हॉस्पिटल में कुमार वृत्ति और बाल रोग विभाग में कार्यरत है। डॉक्टर ओजस्विनी, आपका वेणु धोनी के स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे परिचय और निमंत्रण के लिए। आज हम बात करेंगे कि मॉनसून जो होता है, बार बार बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन सब में बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, उनका इम्यूनिटी कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, केयर गिवर्स का क्या रोल है और डॉक्टर का क्या रोल है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे।
0: करेक्ट। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि इस मौसम में सबसे अधिक कौन कौन से रोग होते हैं?
1: ऐसे मौसम में बच्चों को जनरली सर्दी खांसी होती है, बच्चे को फीवर होता है, लूज मोशन होता है या फिर डायरिया हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, और जैसे कि डेंगू हो गया, जो मॉस्किटो से जो स्प्रेड होता है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सबसे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं।
0: बारिश के मौसम में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो जाती है?
1: बच्चे डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, बच्चे धीरे धीरे अपना इम्यूनिटी डेवलप कर रहे होते हैं इस एज ग्रुप में, तो बच्चों का इस जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है या फिर जिसे हम आयुर्वेद में अग्नि करके बोलते हैं, तो वो अग्नि कम हो जाती है बॉडी में, और वर्षा ऋतु में आयुर्वेद टर्म्स में ऐसे बोला गया है कि वात का प्रकोप होता है, तो इस वजह से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बड़ों में भी कम हो जाती है, और ये बच्चों में और इजीली, जब बच्चे जो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं तो वो और इजीली कम होती है उनमें, तो इसीलिए बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं।
0: अच्छा, तो आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए?
1: घरेलू उपचार की बात करें तो हमें, मतलब माएँ जो है या फिर घर में जो उनके केयर गिवर है, उनको घर का गर्म खाना और घर का फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड जो होता है वो सब देना चाहिए। खाने का ध्यान रखना चाहिए, एक पानी का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्दी ही इन्फेक्शन स्प्रेड होता है पानी के थ्रू, जिससे कि टाइफाइड वगैरह, हेपेटाइटिस, इस सब में बच्चे बीमार पड़ते हैं, और इसीलिए जो पानी भी है हमें हमेशा बॉयल करके, ठंडा करके उसको पीना चाहिए। आरओ का पानी यूज करते सब, तो आरओ के पानी को भी फिर से एक बार बॉयल करके, ठंडा करके ही बच्चों को पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो पानी जो हैवी होता है, जो गुरु होता है, वो थोड़ा हल्का हो जाता है, तो बॉयल करने के बाद पानी की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, तो पानी पे ध्यान रखना चाहिए, घर के खाने पे ध्यान रखना चाहिए, और जो कपड़े पहनते हैं बच्चे, तो वर्षा ऋतु में ऐसा होता है कि कंटिन्यूस, यहाँ पे हम देखते हैं कि कंटिन्यूस बारिश होता है, तो वो जो हम कपड़े सुखाते हैं वो पूरी तरह से सूखता नहीं है, वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है, तो बच्चों को नहीं पता रहता, वो कपड़े लेके कुछ भी पहन लेते हैं, तो उसके वजह से उनको स्किन इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तो जो हमारे घर के माएँ हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े वो पहने वो अच्छी तरह से क्लीन हो, और डिसइन्फेक्टेंट कुछ ऐसा यूज करे कपड़ों में धोते टाइम, और उसके बाद वो कपड़े यूज करे।
0: तो ये तो हो गया जो घर पे बच्चे रहते हैं, मतलब जो बिल्कुल छोटे हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रहते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी?
1: स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो हमें घर में ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब भी बाहर जाएं तो उनके पास जो रेनकोट वगैरह है, अम्ब्रेला कैरी करें, और बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में खेलते हैं, गंदे पानी हर जगह स्कूल में ऐसे जमा होता है, घर में हम इस चीजों का ध्यान रखते हैं कि पानी जमा नहीं है, हम उन्हें बाहर नहीं छोड़ते, पर एक बार बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो दूसरे बच्चों से मिलते हैं, तो सब कुछ उनका हाथ में कॉन्टेमिनेशन होता है, और बाहर खेलते हैं तब वो नहीं देखते, बारिश में जाके खेलते हैं, उनका शूज गीला हो जाता है, सॉक्स गीला हो जाता है, तो बच्चे वही गीले सॉक्स, गीले शूज में दिन भर रहते हैं, वही गीले कपड़ों में रहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म तो स्कूल पे चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कैसे ना, मतलब भीगे कपड़ों में ज्यादा ना रहे, और बच्चे जब स्कूल में टिफिन खाते हैं, ब्रेक होता है, तो बच्चों को ही सिखाना चाहिए कि हमेशा खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो वहां पे हाथ धोना चाहिए, जो घर पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो पानी का बॉटल कैरी कर रहे हैं वो घर का पानी कैरी करके जाए, वही दिन भर पिए, यहाँ वहाँ कहीं से भी पानी ऐसे ना पिए बच्चे, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि इन दिनों में सर्दी खांसी बुखार ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसे होने पर आयुर्वेद में कौन से ऐसे सुरक्षित उपचार बताए गए हैं?
1: सर्दी खांसी जब होती है तो हमें पहले तो हमें इस चीज का प्रिवेंशन करना चाहिए कि हमने जो घर का गर्म खाना है वो पीना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, बेकरी आइटम्स नहीं खाने चाहिए, तो और ज्यादा तला हुआ फूड, जो ऑयली फूड है, वो सब नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए पहले। तो प्रिवेंशन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर बच्चा ऐसे बीमार पड़ता है तो हमें इमीडिएट उसको, क्योंकि बच्चे एक बार बीमार पड़े तो सीवियरली धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस जो है डिजीज का वो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो हमें कभी भी ऐसे ओवर द काउंटर जाके कुछ भी ऐसे मेडिसिन लाके उनको नहीं देना चाहिए। सडनली कुछ एंटीबायोटिक वगैरह है, बिना प्रेस्क्रिप्शन का कुछ भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लिया, तो एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है कि 3 दिन या 5 दिन 7 दिन ऐसे देते। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, ओवर द काउंटर जाके कुछ भी मेडिसिन लाके वो बच्चों को दे देते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल जाके किसी पेडियाट्रिशियन को या फिर किसी भी डॉक्टर को दिखाओ, तो उसके बाद वो मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहिए, वो मॉडर्न हो या फिर आयुर्वेद हो। आयुर्वेद भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ उसका साइड इफेक्ट नहीं है या फिर ऐसा जो हम सोचते हैं, जनरल लोग ऐसे सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। कौन सा मेडिसिन किस बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबका इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा अगर हम बोले तो सबका प्रकृति अलग होता है, सबके बॉडी का अग्नि अलग होता है, सबका इम्यूनिटी अलग होता है, डिजीज को फाइट करने की जो फाइट करने का कैपेसिटी होता है सबका, वो सब बच्चों में अलग होता है, सारे एज ग्रुप्स में अलग होते हैं, तो उस हिसाब से सबकी बॉडी अलग होते हैं। तो इमीडिएट अगर आप आयुर्वेद भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आके उनका असेसमेंट करेंगे, उनका एग्जामिनेशन करके हमें फिर मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो इस दरमियान हमें डायरिया और उल्टी होने पर भी, मतलब उल्टी भी ऐसे भी प्रॉब्लम्स बहुत दिखाई देते हैं बच्चों में, तो ऐसे वक्त आयुर्वेदा में क्या उपचार है?
1: जब बच्चों को ऐसे डायरिया होता है या वोमिटिंग होता है तो बड़े वो चीज को स्टैंड कर सकते हैं कि हमें जल्दी बड़ों में डिहाइड्रेशन के साइंटम्स सिम्टम्स इतनी जल्दी नहीं दिखते, पर बच्चे जो होते हैं उनका वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। कुछ ही बार लूज मोशन हुआ, कुछ ही बार वोमिटिंग हुआ, तो उनको उनका डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। तो अगर ऐसा हुआ बच्चा, उसके होंठ सूखने लगे या फिर बच्चा कुछ अनकॉन्शियस होने लगा या फिर हमें जो स्टूल पास कर रहा है तो उसमें अगर हमें ब्लड दिखा या फिर वोमिटिंग स्टॉप नहीं हो रहा है, कुछ भी खा रहा है तो वोमिटिंग हो रहा है, तब हमें अगर घर में आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली तो ORS है, ORS आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, पर फिर भी हमें वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल लाना चाहिए और फिर जैसे कि डॉक्टर ने बोला फिर एंटीबायोटिक या फिर जो भी मेडिसिन है आयुर्वेद का वो सब स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के साथ वो स्टार्ट करना चाहिए।
0: तो जैसे आपने बताया कि इस दरमियान उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति थोड़ी सी कम होती है तो उसकी वजह से संक्रमण उनको बार बार होता है, तो इससे बचाने के लिए आयुर्वेदा में क्या सलाह दी जाती है, मतलब कैसे हम उसको अच्छे से डेवलप करें या फिर हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ाए?
1: तो रोग प्रति जो इम्यूनिटी है तो उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ मेडिसिन है ऐसा नहीं है, हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है उसके लिए। जैसे कि लाइफस्टाइल में आ गया आपका खाना आ गया, आपका पीना आ गया, आपका सोने का पैटर्न आ गया, तो ये सब चीजें इंक्लूड होती है। तो खाने में वैसे हमें जो वर्षा ऋतु में अग्नि कम होती है बच्चों में, तो उसमें हमें गर्म खाना खाना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रिज में रखा हुआ उसको वापस गर्म किया गया फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, बाहर का खाना जो भी है बेकरी फूड है, बच्चे चॉकलेट खाते हैं आइसक्रीम खाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और पीने पे हमें हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, और जैसे कि वर्षा ऋतु में ऐसे हम देखते हैं कि मच्छर बहुत होते हैं, तो इस सब चीज में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो है हमेशा फुल स्लीव्स पहने, और घर में मॉस्किटो नेट हो, और बच्चे घर के आसपास गंदगी नहीं रही, पानी नहीं जमा होना चाहिए, तो ये, और उनका जो सोने का पैटर्न है तो अच्छा प्रॉपर उनका स्लीप साइकिल होना चाहिए, बच्चे 8 घंटे ऐसे सोने चाहिए। फिर जो अगर फिर भी बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए।
0: बिल्कुल। इस वर्षा ऋतु में बच्चों के लिए कौन सा ऐसा आहार है जो सबसे उपयुक्त माना जाता है?
1: जैसे कि घर में जो हम नॉर्मल फूड खाते जो जल्दी से पच जाता है, कि मूंग दाल हो गया, सूप हो गया, घर की जो सब्जियां हैं हरी सब्जी भी जब हम बनाते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली वॉश करके प्रॉपरली धो के उसको बनाए। फ्रूट्स खा रहे बच्चे तो बच्चों का आदत होता है कि बिना धोए इमीडिएटली वो उठा के खा ले रहे हैं, तो ये सब चीजों का फ्रूट्स जो खा रहे हैं, हम सब कुछ खा सकते हैं जो कि ऐसे सिट्रस फूड है जिसमें विटामिन सी है, तो ऐसे सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा प्रॉपरली उसको धो के वॉश करके खाए, और सब कुछ खा सकते हैं जो घर में फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, जैसे कि राइस हो गया, चपाती हो गया, मूंग दाल हो गया, खिचड़ी हो गया, सूप हो गया हमारा, वेजिटेबल सूप हो गया, तो जो भी इजीली पच जाए तो उन सब चीजों को खाना चाहिए।
0: तो कौन से ऐसे पदार्थ है जिनको हमको नहीं खाना है इस दरमियान?
1: पहले तो बच्चों का बहुत ही आदत होता है कि वो फ्रिज से ठंडा पानी लेके पी लेते हैं, तो ठंडा पानी पीना, चाय वगैरह पीते हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा है ओपीडी में कि वो चाय बिस्किट खाने का उनका आदत रहता है, तो वो सब बंद करना चाहिए। चाय से क्या होता है कि हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। अच्छा। वो बड़ों में ही चाय कॉफी इतना इफेक्ट करता है, हम बड़ों को ही जब हम नहीं पीते तो हमारा सर दर्द स्टार्ट होता है या फिर नींद कम आने लगती है, तो बच्चों में ये और ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चों को जो चाय बिस्किट देते हैं वो बंद करना चाहिए। बेकरी का फूड है, जो ब्रेड हो गया, पाव हो गया, खाने की आदत होती है, वो बंद करना चाहिए। जो ऑयली फूड होता है वो बंद करना चाहिए। तला हुआ खाना इस मौसम में नहीं खाना चाहिए। और चॉकलेट्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, और बच्चे ऐसे बाहर जैसे कि स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये सब बिल्कुल ही इस ऋतु में बंद करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो पानी वो यूज करते हैं वो साफ नहीं होता है। तो ये सब चीजों, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: जैसे कि हम बहुत बार टीवी पे रहे या फिर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बहुत बार कि च्यवनप्राश खाए या फिर कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा ले तो उससे हमारी थोड़ी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है या फिर वो लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ होता है क्या? बच्चों को ये सब देना चाहिए, और अगर देना ही है तो किस उम्र में देना चाहिए और क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए?
1: जैसे कि च्यवनप्राश है या फिर काढ़ा जो बनाते हैं, काढ़े में क्या क्या डालना चाहिए ये सबको सेम नहीं हम दे सकते।
0: अच्छा।
1: तो बच्चे जो होते हैं वो सब, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनका प्रकृति अलग होता है, सबका प्रकृति अलग होता है, सबका मतलब हमारे तीन प्रकृति है, वात है, पित्त है, कफ है, तो सब बच्चों का प्रकृति अलग होता है, एज अलग होता है, और उनका डाइजेस्टिव पावर अलग होता है। तो इसीलिए हम ऐसे रैंडमली हम च्यवनप्राश ऐसे सोच सकते, ऐसे सोचते हैं पेरेंट्स कि कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आयुर्वेद कुछ ऐसे हार्म नहीं करता है, पर ऐसा नहीं है, आयुर्वेद हार्म करता है। और अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में उसको नहीं दे, बच्चों को जो मेडिसिन जाना चाहिए, जो काढ़ा भी जाना चाहिए, उस सबका क्वांटिटी अलग होता है, हर एज में अलग अलग क्वांटिटी में वो जाना चाहिए, हर प्रकृति को अलग अलग क्वांटिटी में जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारा आयुर्वेद हॉस्पिटल में आके, बच्चों के डॉक्टर के पास जाके अच्छे से उनका वेट के, मतलब वजन भी डिफरेंट होता है, बच्चे कभी कभी कम वजन के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर से हमारा जो डोजेज है, जो मात्रा है, वो चेंज होता है। तो वही सब चीजें यूज होती है, जैसे कि अदरक हो गया, दालचीनी हो गया, तुलसी हो गया, सब घरेलू जो ब्लैक पेपर हो गया, वो सब यूज करते हैं, पर उन सबका जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो सब मेडिसिन में अलग अलग रहती है, और हर बच्चों को वो अलग अलग मात्रा में जानी चाहिए। कुछ चीजें जानी चाहिए, कुछ चीजों किसी बच्चों को नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए आप एक बार कंसल्टेशन लेके ये सब जो च्यवनप्राश वगैरह स्टार्ट करना है तो कहाँ पे बंद करना है, किस स्टेज पे, किस स्टेज पे स्टार्ट करना है, ये सब कुछ आपको डॉक्टर के साथ बात करके स्टार्ट करना चाहिए।
0: इस दरमियान बच्चों में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार भी हो जाते हैं बहुत बार, तो इससे बचने के लिए आप क्या सलाह देंगे?
1: जैसे कि डेंगू होता है या फिर मलेरिया हो गया, तो ये चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा घर के बाहर जाता है तो फुल कपड़ों में, पूरा हाथ कवर है, उनका पैर कवर है, कवर होके वो बाहर जाए, और घर में मॉस्किटो डोर्स पे, जैसे हम मॉस्किटो नेट लगाते हैं, और वो सब लगाना चाहिए। रात में सोते टाइम मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए, या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट्स आ गए आजकल, क्रीम आ गए, लोशन आ गए, जो बॉडी पे लगाते हैं बच्चों को, तो ये सब कुछ उनको लगाना चाहिए मॉस्किटो से बचने के लिए। और अगर बुखार, जैसे कि बुखार हो गया, तो सबके घर में, बहुत के घर में ऐसे थर्मोमीटर नहीं होता है, तो एक डिजिटल थर्मोमीटर हमेशा सारे पेरेंट्स को अपने घर पे रखना चाहिए। और बुखार आए तो हमें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, और ऐसे कुछ भी मेडिसिन तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे इमीडिएट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, विदाउट कंसल्टेशन आपने कुछ स्टार्ट कर दिया। पैरासिटामोल वगैरह आप दे सकते हैं घर पे, पर वो भी उसका आपको डोज अच्छे से पता होना चाहिए। फिर एंटीबायोटिक ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं स्टार्ट करना है ओवर द काउंटर लेके, आपको बच्चे को हॉस्पिटल लाना है, फिर डॉक्टर जैसे बोले आपको वैसे करते जाना।
0: बिल्कुल। इस दरमियान मस्किटो की भी बहुत मात्रा रहती है, और उससे बचने के लिए हमें खासकर ख्याल रखना चाहिए। बरसात में जैसे आपने बताया कि अगर हम वेट कपड़े पहने ज्यादा देर या फिर बार बार पहनते रहे तो फिर फंगल इन्फेक्शन रहे या फिर स्किन डिसीज होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: स्किन डिजीज जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे वॉल्स वगैरह पे फंगस ग्रोथ होता है, तो हमें जो बच्चे कपड़े पहनते हैं उसके उनको धोते टाइम अच्छे से डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे से सूख जाए, या फिर अगर सूख नहीं रहा है तो हम उसको थोड़ा आयरन करके गर्म करके उसको बच्चों को पहना सकते हैं। और बच्चे अगर बारिश में भीग जाए तो घर में वो ख्याल रखना चाहिए कि इमीडिएट आके वो ड्रेस वो चेंज कर ले, वही अगर हम वेट कपड़ा पहने रहे तो इससे फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस है। और हमारे पास ऐसे आयुर्वेद में ऐसे दवाइयां हैं जो कि हम नहाते टाइम उसको पानी में वो कषाय वगैरह डाल के उससे नहलाते हैं, तो ये सब कुछ है जो नहलाने के पानी में हमने कुछ डिसइंफेक्टेंट ये डाला उससे नहाया, और जब हम नहा के आ रहे तो अच्छे से अपने खुद को अच्छे से बच्चों को पोंछना चाहिए और फिर सूखा कपड़ा पहनाना चाहिए, तो ये सब चीजों का छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
0: बच्चों की पाचन शक्ति मजबूत रखने के लिए कौन से आयुर्वेदिक उपाय उपयोगी पड़ते हैं?
1: बच्चों का पाचन शक्ति के लिए हमारे पास बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, हम जैसे कषाय हो गया ऐसे देते हैं, चूर्ण हो गया, उनका अग्नि इम्प्रूव करने के लिए जो भी मेडिसिन है हमारे पास, तो वो सब कुछ हमारा जो अग्नि बच्चों का जो कम पड़ जाता है, तो हर डिजीज के लिए अलग बोला है। जैसे कि सर्दी खांसी होता है, अग्नि कम पड़ता है तो सर्दी खांसी भी होता है, लूज मोशन भी होता है, अग्नि के कम होने से वोमिटिंग होता है, टाइफाइड होता है, तो हर डिजीज में अलग अलग अग्नि को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग मेडिसिन है, और बच्चा स्वस्थ है तो उसके अग्नि को इम्प्रूव करने के लिए अलग मेडिसिन है, अगर अग्नि ठीक है तो उसको कैसे वो मेंटेन करे उसके लिए भी मेडिसिन है, तो ये सब कुछ डिफरेंट मेडिसिन है और डिफरेंट फॉर्मुलेशन में है, चूर्ण में है, काढ़े के फॉर्म में है और सिरप के फॉर्म में है, तो उस हिसाब से आपको एक बार डॉक्टर के पास आके कंसल्टेशन करके मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं।
0: और कौन से ऐसे लक्षण हम बताएंगे कि वो छोड़ के अगर बच्चों में ऐसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए?
1: जैसे कि बच्चे को ऐसे सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दी खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में ज्यादा दर्द होता है, या फिर चेस्ट पेन होता है, बुखार जब हम पैरासिटामोल देने के बाद भी बुखार उतरता नहीं है और बार बार बुखार आता है, लूज मोशन आपको बार बार हो रहे हैं, या फिर स्टूल में उसको ब्लड दिख रहे हैं, बार बार वोमिटिंग हो रहा है, कुछ भी डिहाइड्रेशन का साइन हो गया जो पेरेंट्स को दिखता है, या फिर बच्चा इनएक्टिव हो रहा है, बच्चा सुस्त पड़ रहा है, खेल नहीं रहा है, तो जब ऐसे कुछ हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं बच्चों में तब पेरेंट्स को इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना चाहिए।
0: आखिर में माता पिता के लिए वर्षा ऋतु में बच्चों की सेहत को लेकर आपका क्या संदेश रहेगा?
1: तो पहले तो जो वर्षा ऋतु है ऐसे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि बारिश हो रही है, सबको पसंद होता है, पर इसमें हम बच्चे हमारे बहुत बीमार पड़ते हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही टेंशन का पीरियड भी रहता है, तो सिर्फ हमें जब इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सिर्फ मेडिसिन दे दिया, मेडिसिन से ठीक हो गया बच्चा, तो ऐसा नहीं है, हमें खाने पीने से लेके खाने का ध्यान रखना चाहिए, पीने का ध्यान रखना चाहिए, उनके हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, और उनके बच्चे जब बाहर जाते हैं उस सब चीजों पे छोटी छोटी चीजों पे वो ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये वर्षा ऋतु तो सबको पसंद है, बट इस वर्षा ऋतु में सब लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी बीमार पड़ते हैं, तो ये वर्षा ऋतु जो है वो अपने हेल्थ के साथ अच्छे से एंजॉय करें, ऐसे ही हम बताएंगे। और उसी के साथ साथ जो KLEBM कंकनवाड़ी आयुर्वेदा कॉलेज और हॉस्पिटल में आपका एक मानसून कवच करके आपने एक नया स्टार्ट किया है, उसके बारे में क्या बताएंगे?
1: जैसे कि बच्चे बार बार जब बीमार पड़ते हैं उनका अग्नि कम होता है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, तो उसके लिए हमने एक मॉनसून कवच करके एक प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट किया है, वो पर्सनलाइज प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब जब बच्चा आता है उसके एज के अकॉर्डिंग उसके वेट का उनका प्रकृति का हम असेसमेंट करते हैं कि बच्चा वात है, पित्त है, कफ है, उनका अग्नि कैसा है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, उनका ग्रोथ पैटर्न कैसा है, ये सब कुछ हम बच्चे का एग्जामिन करके उनका असेसमेंट करके, तो पर्सनलाइज मतलब वो बच्चा जो पर्टिकुलर बच्चे को हर बच्चे को सेम मेडिसिन नहीं जाता है, सब बच्चे को जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, हर बच्चा अलग होता है, तो हर बच्चे का इम्यूनिटी जो है वो अलग होता है, डिजीज के अकॉर्डिंग को फाइट करने का जो कैपेसिटी है बच्चों का अलग होता है। तो इसलिए हमने जो प्रकृति असेसमेंट है उसको स्टार्ट किया है और उसके अकॉर्डिंगली हमने सबको सबका मेडिसिन पर्सनलाइज्ड वे में एक किट प्रिपेयर किया है।
2: अच्छा।
1: और वो हम बच्चों को देते हैं ताकि उनका अग्नि इम्प्रूव हो, उनको कुछ भी डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम होता है, लूज मोशन है, डायरिया है, वो सब नहीं हो। बच्चे बार बार रेस्पिरेटरी इलनेस होता है, सर्दी खांसी बुखार होता है, गले में दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है या फिर स्किन डिजीज होता है, उस सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम। और ये जो बच्चे हैं वो जन्म से लेके 18 इयर्स के बच्चों तक सबको हम एसेस कर रहे हैं।
2: अच्छा।
1: और ये सबके लिए है, जो बच्चे बीमार पड़ रहे सिर्फ ऐसा नहीं है, जो बच्चे हेल्दी है वो भी आ सकते हैं, हमसे एडवाइस ले सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम सब कुछ डाइट प्लान बताएंगे, उनको एडवाइस करेंगे, मेडिसिन देंगे। अगर बच्चा हेल्दी है तब भी आना चाहिए ताकि जो कमिंग 2-3 मंथ्स हैं, जो बारिश जब पीक पे हो तब भी बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए। तो हेल्दी जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, जो बार बार बीमार पड़ते हैं वो भी आ सकते हैं, और जो बीमारी में हैं अभी तो वो भी आ सकते हैं। और हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन है, वो हम सबको पर्सनलाइज्ड किट दे रहे हैं।
2: तो इसका लाभ लेने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा?
1: इसका लाभ लेने के लिए हमें केली आयुर्वेद हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर जो शाहपुर में है वहाँ पे आना पड़ेगा। मंडे से संडे 7 दिन खुले रहते हैं, 9 to 5, तो संडे भी हमारा हॉलीडे नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग दिस, जो हमारा ये प्रोग्राम है वो संडे भी चालू है।
2: अच्छा।
1: और पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर दोनों ही वर्किंग हैं, तो उनको भी ये सुविधा मिल पाए, तो इसलिए हमने संडे भी खोल रखा है हॉस्पिटल 9 to 5। और ये एक महीने के लिए July 1 से स्टार्ट हुआ है, 31st तक हम दे रहे हैं।
2: अच्छा।
1: और ये किट अराउंड 200 से 300, जैसे कि हमने कहा कि पर्सनलाइज्ड है तो सबका मेडिसिन अलग अलग जाएगा, अलग अलग अमाउंट में जाएगा, इसलिए वेरी करेगा जो अमाउंट है वो वेरी करेगा, 200 से 300 तक ये कॉस्ट होगा।
2: अच्छा।
1: ओपीडी हमारा 10 एंड 11 है, आप काउंटर पे आ सकते हैं, वहां से आपको काउंटर वाले ओपीडी 10 एंड 11 में पहुंचा देंगे, वहां पे डॉक्टर रहेंगे और वो आपको असेस करेंगे, आपके बच्चे को एग्जामाइन करेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग हम आपको मेडिसिन देंगे।
2: बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छी सेवा आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं इस दरमियान, तो बच्चों को बीमारी से दूर रखने के लिए आप जिसको मानसून कवच नाम आपने दिया है वो जो किट है, तो इसका अवश्य लाभ लेंगे लोग और बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं।
1: थैंक यू।
2: और आज के इस विषय पे बात करने के लिए आपने टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। डॉक्टर ओजस्विनी रेड्डी हमारे साथ थी, जो केली बीएम कंकनवाड़ी आयुर्वेदा कॉलेज और हॉस्पिटल में कुमार वृत्त और बाल रोग विभाग में कार्यरत। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए, नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुधुनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार। केली विश्वनाथ कत्ती दंत महाविद्यालय बेळगावी येते। जन्मलेल्या मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत दातांची ट्रीटमेंट, ज्यामध्ये दातांची स्वच्छता, दात काढणे आणि बसवणे, वाकडे दात सरळ रेषेत करणे, चिरलेले ओठ, अपघातामुळे डोकं, मान, चेहरा आणि तोंडाशी संबंधित सर्जिकल ट्रीटमेंट, डोळे, नाक आणि कान यांची कृत्रिम प्लेसमेंट, तोंडाच्या कर्करोगावरती उपचार, तसेच दातांचा पिवळेपणा दूर करणे आणि बरेच काही। या सर्व सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी भेट द्या केली विश्वनाथ कत्ती दंत महाविद्यालय, केली युनिव्हर्सिटी कॅम्पस, नेहरू नगर, बेळगावी। आमचा फोन नंबर 08312470362 आणि 9448998331।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

Welcome, welcome, welcome, ladies and gentlemen, boys and girls and kids of all the ages to our show Be Relax. And you have tuned into Belgium's first radio station, Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu. मैं हूं आपके साथ आपका प्यारा दुलारा रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे आयुष. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि साल के 12 महीने यानी 365 दिन हाइप में रहता है. आप गेस करना चाहोगे? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ. वो टॉपिक है #fitness. दोस्तों, जिंदगी में बहुत सी चीजें जरूरी है, जिनमें से सबसे जरूरी है वो है आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस. इसी बारे में आज हम बात करेंगे इन सॉन्ग्स के बाद. कीप लिसनिंग टू आवर चैनल वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासू.

वेलकम बैक टू आवर शो बी रिलैक्स। और हम बात कर रहे हैं आज के ऐसे हॉट टॉपिक की जो आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, फिटनेस की। टू कीप आवर बॉडी इन गुड हेल्थ इट्स आवर ड्यूटी, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू कीप आवर माइंड एंड बॉडी स्ट्रांग एंड क्लियर। और जहाँ डाइट की बात आती है, जो कि कभी भी आसान नहीं होता, बस आप बेटर होते जाते हैं। सी द जिम इज नॉट द सोशल क्लब ऑफ फिट। बींग फिजिकली फिट ऑल्सो हेल्प्स योर माइंड, यानी आपके दिमाग को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स और डिटेल्स इन सॉन्ग के बाद। बने रहिए हमारे चैनल वेनु धोनी 90.4 KLE कनासू पर।

और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा।

सारे बेनिफिट्स है, जैसे ओवरऑल स्ट्रेंथ, आप अजाइल रहते हैं यानी फुर्तीले रहते हैं, आपकी बॉडी में थोड़ी चपलता बनी हुई रहती है, एक्सरसाइज से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और अब वक्त हो गया है कुछ जबरदस्त गानों का, सुनते रहिए वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू।

दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां फिटनेस की बात होती है वहां लोगों का ध्यान सबसे पहले बड़ी एक्टिविटीज पर जाता है, जो कि दो बड़ी एक्टिविटीज मैं आपको बताता हूं, वो है योगा और जिम। आप अपने गोल्स के हिसाब से कोई भी एक्टिविटीज चूज करते हैं कर सकते हैं, जैसे जिमिंग और डांसिंग में भी आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। आप चाहे तो स्विमिंग ले सकते हैं, योगा ले सकते हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स ले सकते हैं, या फिर जॉगिंग भी कर सकते हैं या रनिंग भी कर सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि एक्सरसाइज को केवल सुबह ही करना चाहिए, शाम को नहीं, या शाम को करना चाहिए सुबह नहीं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज का कोई भी टाइम नहीं होता और आपके वर्क स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपना एक्सरसाइज स्केड्यूल बना सकते हैं, जिसको आपको नियमित रूप से फॉलो करना होता है, तभी ये आपको हेल्प करेगा। चलिए आपको सुनाते हैं ये दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

दोस्तों बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु आयुष के साथ। फिट रहने में एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप सोच रहे होंगे उफ डाइट, हाँ कल से शुरू करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। अब बिग नो, आपने वो सुना है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बस फिर आज ही अपनी डाइट ठीक कीजिए। यानी ये कि आपको हर रोज एक बैलेंस डाइट जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और विटामिन्स हो, जितना हो सके जंक फूड से बचे, मीठा या शक्कर से बनी चीजों का सेवन थोड़ा सा कम कर दे। सी आई विल गिव यू टिप इफ यू कीप गुड बैलेंस्ड फूड इन योर फ्रिज। मतलब अगर आप अच्छा खाना या गुड बैलेंस्ड फूड ही अपने फ्रिज में रखोगे तो आप खाओगे भी वही। ओके, यू विल ईट बैलेंस्ड फूड। अगर जंक होगा ही नहीं घर में तो आप खाओगे भी नहीं। ओके, ये बहुत ही लाजवाब टिप है, प्लीज इसको फॉलो करो, ट्राई करके देखो। ऐसी ही मसालेदार टिप्स के लिए सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

0: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
1: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
0: लेकिन कब, कैसे?
1: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: बरसों बाद ऊँट लेने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

नमस्कार, हम बात कर रहे हैं आज फिटनेस के ऊपर। और डाइट फिटनेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। राइट डाइट एंड न्यूट्रिशन हेल्प्स इन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ योर टिश्यूज। ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट मेनी डिसीजेस, जिससे आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। आपको मैं कुछ रूल्स के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिएट में रहिए, यानी अगर आपको आपके शरीर को एक दिन में 2000 कैलोरीज की जरूरत है तो आप 1800 ही खाइए, जिससे आप थोड़े से डेफिशिएट में रहेंगे। मतलब अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की जरूरत है और आप कम खा रहे हैं, मतलब 1800 खा रहे हैं, तो आप 200 डेफिशिएट में

रहेंगे। आप सोच रहे होंगे अगर आपको वेट लॉस करना है उसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे अरे अब इस कैलोरीज को कैसे नापे कैसे देखे, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, आपके शरीर को जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा कम खाए या उतना ही खाए जितनी आपको जरूरत है, ठीक है। आपको बताऊंगा कैलोरी सरप्लस के बारे में हमारे अगले भाग में। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

0: हेलो एंड वेलकम बैक टू वेनु धोनी 9.4 KLE कनसू, बेलगावी का सबसे पहला रेडियो स्टेशन। और हमारा शो भी रिलैक्स चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कैलोरी सरप्लस के बारे में। कैलोरी सरप्लस क्या है, मतलब अगर आपको वेट गेन करना है उसे हम लोग कैलोरी सरप्लस कहते हैं। मतलब हम हमारी आवश्यकता के अनुसार उससे थोड़ा सा ज्यादा या ज्यादा कैलोरी खाते हैं जिससे हम लोग वेट गेन कर सकते हैं। इट्स द एक्ट ऑफ ईटिंग मोर देन यू बर्न ऑन अ डेली बेसिस। मतलब आपके शरीर को, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपको 2000 कैलोरी खा रहे तो 1800 खाइए जिससे आप कैलोरी डेफिशिएट में रहेंगे। लेकिन अगर आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है यानी वेट गेन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके शरीर को 2000 कैलोरीज की जरूरत है तो आप 2200 खाइए, मतलब 2200, मतलब 200 कैलोरी ज्यादा खाइए जिससे जो शरीर आपका 2000 कैलोरीज यूज करेगा, जो बची हुई 200 कैलोरीज है वो आपके शरीर में थोड़ी सी स्टोर हो जाएगी। ये तो बात रही न्यूट्रिशन की। अब मैं आपको बता दूं, फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ। फिटनेस कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंच सकते हैं। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी विच यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे इन योर लाइफ। और हमें ये एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए तैयार करता है। तो आप भी अपने सारे एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए और अपने पूरे दिन में से केवल 1 घंटा अपनी सेहत को दीजिए। अब वक्त हो गया है कुछ जबरदस्त और दिल को छू जाने वाले गानों का। सुनते रहिए वेनु धोनी 90.4 KLE कनसू।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
2: अब क्या सुनाए।

स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में विद आरजे आयुष। और हम बात कर रहे हैं फिटनेस की। एट लास्ट सिंपल शब्दों में आपको मैं अगर बताऊं तो अल्टीमेटली एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, इट्स अ प्रैक्टिस विच हेल्प्स बॉडी एंड माइंड। और रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर ओवरऑल हेल्थ। सो आज ही अपनी फिटनेस को एक डेली और अच्छी हैबिट बनाई है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू वेनु धोनी 90.4 KLE कनसू। आई होप यू एंजॉयड द म्यूजिक एंड द डिस्कशंस व्हिच वी हैड टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए वेनु धोनी 90.4 KLE कनसू एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में बरसात के मौसम में होने वाले रोग और आयुर्वेदिक उपचार क्या है, इसके ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर ओजस्विनी रेड्डी, जो KLE BM कंकनवाड़ी आयुर्वेदा कॉलेज और हॉस्पिटल में कुमार वृत्ति और बाल रोग विभाग में कार्यरत है। डॉक्टर ओजस्विनी, आपका वेणुधोनी के स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे परिचय और निमंत्रण के लिए। आज हम बात करेंगे कि मॉनसून जो होता है, बार बार बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन सब में बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, उनका इम्यूनिटी कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, केयर गिवर्स का क्या रोल है और डॉक्टर का क्या रोल है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे।
0: करेक्ट। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि इस मौसम में सबसे अधिक कौन कौन से रोग होते हैं?
1: ऐसे मौसम में बच्चों को जनरली सर्दी खांसी होती है, बच्चे को फीवर होता है, लूज मोशन होता है या फिर डायरिया हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, और जैसे कि डेंगू हो गया, जो मॉस्किटो से जो स्प्रेड होता है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सबसे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं।
0: बारिश के मौसम में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो जाती है?
1: बच्चे डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, बच्चे धीरे धीरे अपना इम्यूनिटी डेवलप कर रहे होते हैं इस एज ग्रुप में, तो बच्चों का इस जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है या फिर जिसे हम आयुर्वेद में अग्नि करके बोलते हैं, तो वो अग्नि कम हो जाती है बॉडी में, और वर्षा ऋतु में आयुर्वेद टर्म्स में ऐसे बोला गया है कि वात का प्रकोप होता है, तो इस वजह से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बड़ों में भी कम हो जाती है और ये बच्चों में और इजीली, जब बच्चे जो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं तो वो और इजीली कम होती है उनमें, तो इसीलिए बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं।
0: अच्छा, तो आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए?
1: घरेलू उपचार की बात करें तो हमें, मतलब माएँ जो है या फिर घर में जो उनके केयर गिवर है, उनको घर का गर्म खाना और घर का फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड जो होता है वो सब देना चाहिए। खाने का ध्यान रखना चाहिए, एक पानी का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्दी ही इन्फेक्शन स्प्रेड होता है पानी के थ्रू, जिससे कि टाइफाइड वगैरह, हेपेटाइटिस, इस सब में बच्चे बीमार पड़ते हैं, और इसीलिए जो पानी भी है हमें हमेशा बॉयल करके, ठंडा करके उसको पीना चाहिए। आरओ का पानी यूज करते सब, तो आरओ के पानी को भी फिर से एक बार बॉयल करके, ठंडा करके ही बच्चों को पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो पानी जो हैवी होता है, जो गुरु होता है, वो थोड़ा हल्का हो जाता है, तो बॉयल करने के बाद पानी की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, तो पानी पे ध्यान रखना चाहिए, घर के खाने पे ध्यान रखना चाहिए, और जो कपड़े पहनते हैं बच्चे, तो वर्षा ऋतु में ऐसा होता है कि कंटिन्यूस, यहाँ पे हम देखते हैं कि कंटिन्यूस बारिश होता है, तो वो जो हम कपड़े सुखाते हैं वो पूरी तरह से सूखता नहीं है, वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है, तो बच्चों को नहीं पता रहता, वो कपड़े लेके कुछ भी पहन लेते, तो उसके वजह से उनको स्किन इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तो जो हमारे घर के माए हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े वो पहने वो अच्छी तरह से क्लीन हो और डिसइंफेक्टेंट कुछ ऐसा यूज करे कपड़ों में धोते टाइम, और उसके बाद वो कपड़े यूज करे।
0: तो ये तो हो गया जो घर पे बच्चे रहते हैं, मतलब जो बिल्कुल छोटे हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रहते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी?
1: स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो हमें घर में ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब भी बाहर जाएं तो उनके पास जो रेनकोट वगैरह है, अम्ब्रेला कैरी करे, और बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में खेलते हैं, गंदे पानी हर जगह स्कूल में ऐसे जमा होता है, घर में हम इस चीजों का ध्यान रखते हैं कि पानी जमा नहीं है, हम उन्हें बाहर नहीं छोड़ते, पर एक बार बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो दूसरे बच्चों से मिलते हैं, तो सब कुछ उनका हाथ में कॉन्टेमिनेशन होता है, और बाहर खेलते हैं तब वो नहीं देखते, बारिश में जाके खेलते हैं, उनका शूज गीला हो जाता है, सॉक्स गीला हो जाता है, तो बच्चे वही गीले सॉक्स, गीले शूज में दिन भर रहते हैं, वही गीले कपड़ों में रहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म तो स्कूल पे चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कैसे ना, मतलब भीगे कपड़ों में ज्यादा ना रहे, और बच्चे जब स्कूल में टिफिन खाते हैं, ब्रेक होता है, तो बच्चों को ही सिखाना चाहिए कि हमेशा खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो वहां पे हाथ धोना चाहिए, जो घर पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो पानी का बॉटल कैरी कर रहे हैं वो घर का पानी कैरी करके जाए, वही दिन भर पिए, यहाँ वहाँ कहीं से भी पानी ऐसे ना पिए बच्चे, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि इन दिनों में सर्दी खांसी बुखार ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसे होने पर आयुर्वेद में कौन से ऐसे सुरक्षित उपचार बताए गए हैं?
1: सर्दी खांसी जब होती है तो हमें पहले तो हमें इस चीज का प्रिवेंशन करना चाहिए कि हमने जो घर का गर्म खाना है वो पीना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, बेकरी आइटम्स नहीं खाने चाहिए, तो और ज्यादा तला हुआ फूड, जो ऑयली फूड है वो सब नहीं खाना चाहिए, तो ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए पहले। तो प्रिवेंशन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर बच्चा ऐसे बीमार पड़ता है तो हमें इमीडिएट उसको, क्योंकि बच्चे एक बार बीमार पड़े तो सीवियरली धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस जो है डिजीज का वो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो हमें कभी भी ऐसे ओवर द काउंटर जाके कुछ भी ऐसे मेडिसिन लाके उनको नहीं देना चाहिए। सडनली कुछ एंटीबायोटिक वगैरह है, बिना प्रेस्क्रिप्शन का कुछ भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लिया, तो एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है कि 3 दिन या 5 दिन 7 दिन ऐसे देते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं ओवर द काउंटर जाके कुछ भी मेडिसिन लाके वो बच्चों को दे देते हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल जाके किसी पेडियाट्रिशियन को या फिर किसी भी डॉक्टर को दिखाओ तो उसके बाद वो मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहिए, वो मॉडर्न हो या फिर आयुर्वेद हो। आयुर्वेद भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ उसका साइड इफेक्ट नहीं है या फिर ऐसा जो हम सोचते हैं जनरल लोग ऐसे सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन सा मेडिसिन किस बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबका इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा अगर हम बोले तो सबका प्रकृति अलग होता है, सबके बॉडी का अग्नि अलग होता है, सबका इम्यूनिटी अलग होता है, डिजीज को फाइट करने की जो फाइट करने का कैपेसिटी होता है सबका, वो सब बच्चों में अलग होता है, सारे एज ग्रुप्स में अलग होते हैं, तो उस हिसाब से सबकी बॉडी अलग होते हैं। तो इमीडिएट अगर आप आयुर्वेद भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आके उनका असेसमेंट करेंगे, उनका एग्जामिनेशन करके हमें फिर मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो इस दरमियान हमें डायरिया और उल्टी होने पर भी, मतलब उल्टी भी ऐसे भी प्रॉब्लम्स बहुत दिखाई देते हैं बच्चों में, तो ऐसे वक्त आयुर्वेदा में क्या उपचार है?
1: जब बच्चों को ऐसे डायरिया होता है या वोमिटिंग होता है तो बड़े वो चीज को स्टैंड कर सकते हैं कि हमें जल्दी बड़ों में डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम्स इतनी जल्दी नहीं दिखते, पर बच्चे जो होते हैं उनका वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, कुछ ही बार लूज मोशन हुआ, कुछ ही बार वोमिटिंग हुआ, तो उनको उनका डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। तो अगर ऐसा हुआ बच्चा उसके होठ सूखने लगे या फिर बच्चा कुछ अनकॉन्शियस होने लगा या फिर हमें जो स्टूल पास कर रहा है तो उसमें अगर हमें ब्लड दिखा या फिर वोमिटिंग स्टॉप नहीं हो रहा है, कुछ भी खा रहा है तो वोमिटिंग हो रहा है, तब हमें अगर घर में आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली तो वो ORS है, ORS आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, पर फिर भी हमें वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल लाना चाहिए और फिर जैसे कि डॉक्टर ने बोला फिर एंटीबायोटिक या फिर जो भी मेडिसिन है आयुर्वेद का वो सब स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के साथ वो स्टार्ट करना चाहिए।
0: तो जैसे आपने बताया कि इस दरमियान उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति थोड़ी सी कम होती है तो उसकी वजह से संक्रमण उनको बार बार होता है, तो इससे बचाने के लिए आयुर्वेदा में क्या सलाह दी जाती है, मतलब कैसे हम उसको अच्छे से डेवलप करें या फिर हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ाए?
1: तो रोग प्रति जो इम्यूनिटी है तो उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ मेडिसिन है ऐसा नहीं है, हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है उसके लिए। जैसे कि लाइफस्टाइल में आ गया आपका खाना आ गया, आपका पीना आ गया, आपका सोने का पैटर्न आ गया, तो ये सब चीजें इंक्लूड होती है। तो खाने में वैसे हमें जो वर्षा ऋतु में अग्नि कम होती है बच्चों में, तो उसमें हमें गर्म खाना खाना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाना चाहिए, ऐसे फ्रिज में रखा हुआ उसको वापस गर्म किया गया फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, बाहर का खाना जो भी है बेकरी फूड है, बच्चे चॉकलेट खाते हैं आइसक्रीम खाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और पीने पे हमें हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, और जैसे कि वर्षा ऋतु में ऐसे हम देखते हैं कि मच्छर बहुत होते हैं, तो इस सब चीज में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो है हमेशा फुल स्लीव्स पहने, और घर में मॉस्किटो नेट हो, और बच्चे घर के आसपास गंदगी नहीं रही, पानी नहीं जमा होना चाहिए, तो ये और उनका जो सोने का पैटर्न है तो अच्छा प्रॉपर उनका स्लीप साइकिल होना चाहिए, बच्चे 8 घंटे ऐसे सोने चाहिए। फिर जो अगर फिर भी बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए।
0: बिल्कुल। इस वर्षा ऋतु में बच्चों के लिए कौन सा ऐसा आहार है जो सबसे उपयुक्त माना जाता है?
1: जैसे कि घर में जो हम नॉर्मल फूड खाते जो जल्दी से पच जाता है कि मूंग दाल हो गया, सूप हो गया, घर की जो सब्जियां हैं हरी सब्जी भी जब हम बनाते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली वॉश करके प्रॉपरली धो के उसको बनाए। फ्रूट्स खा रहे बच्चे तो बच्चों का आदत होता है कि बिना धोए इमीडिएटली वो उठा के खा ले रहे, तो ये सब चीजों का फ्रूट्स जो खा रहे हम सब कुछ खा सकते हैं जो कि ऐसे सिट्रस फूड है जिसमें विटामिन सी है, तो ऐसे सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा प्रॉपरली उसको धो के वॉश करके खाए, और सब कुछ खा सकते हैं जो घर में फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, जैसे कि राइस हो गया, चपाती हो गया, मूंग दाल हो गया, खिचड़ी हो गया, सूप हो गया, हमारा वेजिटेबल सूप हो गया, तो जो भी इजीली पच जाए तो उन सब चीजों को खाना चाहिए।
0: तो कौन से ऐसे पदार्थ है जिनको हमको नहीं खाना है इस दरमियान?
1: पहले तो बच्चों का बहुत ही आदत होता है कि वो फ्रिज से ठंडा पानी लेके पी लेते हैं, तो ठंडा पानी पीना, चाय वगैरह पीते हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा है ओपीडी में कि वो चाय बिस्किट खाने का उनका आदत रहता है, तो वो सब बंद करना चाहिए। चाय से क्या होता है कि हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। अच्छा। वो बड़ों में ही चाय कॉफी इतना इफेक्ट करता है, हम बड़ों को ही जब हम नहीं पीते तो हमारा सर दर्द स्टार्ट होता है या फिर नींद कम आने लगती है, तो बच्चों में ये और ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चों को जो चाय बिस्किट देते हैं वो बंद करना चाहिए। बेकरी का फूड है, जो ब्रेड हो गया, पाव हो गया, खाने की आदत होती है, वो बंद करना चाहिए। जो ऑयली फूड होता है वो बंद करना चाहिए। तला हुआ खाना इस मौसम में नहीं खाना चाहिए। और चॉकलेट्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, और बच्चे ऐसे बाहर जैसे कि स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये सब बिल्कुल ही इस ऋतु में बंद करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो पानी वो यूज करते हैं वो साफ नहीं होता है। तो ये सब चीजों, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: जैसे कि हम बहुत बार टीवी पे रहे या फिर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बहुत बार कि च्यवनप्राश खाए या फिर कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा ले तो उससे हमारी थोड़ी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, या फिर वो लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ होता है क्या? बच्चों को ये सब देना चाहिए, और अगर देना ही है तो किस उम्र में देना चाहिए और क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए?
1: जैसे कि च्यवनप्राश है या फिर काढ़ा जो बनाते हैं, काढ़े में क्या क्या डालना चाहिए ये सबको सेम नहीं हम दे सकते।
0: अच्छा।
1: तो बच्चे जो होते हैं वो सब, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनका प्रकृति अलग होता है, सबका प्रकृति अलग होता है, सबका मतलब हमारे तीन प्रकृति है, वात है, पित्त है, कफ है, तो सब बच्चों का प्रकृति अलग होता है, एज अलग होता है, और उनका डाइजेस्टिव पावर अलग होता है, तो इसीलिए हम ऐसे रैंडमली हम च्यवनप्राश ऐसे सोचते हैं पेरेंट्स कि कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आयुर्वेद कुछ ऐसे हार्म नहीं करता है, पर ऐसा नहीं है, आयुर्वेद हार्म करता है। और अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में उसको नहीं दे, बच्चों को जो मेडिसिन जाना चाहिए, जो काढ़ा भी जाना चाहिए, उस सबका क्वांटिटी अलग होता है, हर एज में अलग अलग क्वांटिटी में वो जाना चाहिए, हर प्रकृति को अलग अलग क्वांटिटी में जाना चाहिए, तो ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारा आयुर्वेद हॉस्पिटल में आके बच्चों के डॉक्टर के पास जाके अच्छे से उनका वेट के मतलब वजन भी डिफरेंट होता है, बच्चे कभी कभी कम वजन के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर से हमारा जो डोजेस है, जो मात्रा है, वो चेंज होता है। तो वही सब चीजें यूज होती है, जैसे कि अदरक हो गया, दालचीनी हो गया, तुलसी हो गया, सब घरेलू जो ब्लैक पेपर हो गया, वो सब यूज करते हैं, पर उन सबका जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो सब मेडिसिन में अलग अलग रहती है, और हर बच्चों को वो अलग अलग मात्रा में जानी चाहिए, कुछ चीजें जानी चाहिए, कुछ चीजों किसी बच्चों को नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए आप एक बार कंसल्टेशन लेके ये सब जो च्यवनप्राश वगैरह स्टार्ट करना है तो कहाँ पे बंद करना है, किस स्टेज पे, किस स्टेज पे स्टार्ट करना है, ये सब कुछ आपको डॉक्टर के साथ बात करके स्टार्ट करना चाहिए।
0: इस दरमियान बच्चों में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार भी हो जाते हैं बहुत बार, तो इससे बचने के लिए आप क्या सलाह देंगे?
1: जैसे कि डेंगू होता है या फिर मलेरिया हो गया, तो ये चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा घर के बाहर जाता है तो फुल कपड़ों में पूरा हाथ कवर है, उनका पैर कवर है, कवर होके वो बाहर जाए, और घर में मॉस्किटो डोर्स पे जैसे हम मॉस्किटो नेट लगाते हैं और वो सब लगाना चाहिए, रात में सोते टाइम मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए, या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट्स आ गए आजकल, क्रीम आ गए, लोशन आ गए जो बॉडी पे लगाते हैं बच्चों को, तो ये सब कुछ उनको लगाना चाहिए मॉस्किटो से बचने के लिए। और अगर बुखार, जैसे कि बुखार हो गया, तो सबके घर में, बहुत के घर में ऐसे थर्मोमीटर नहीं होता है, तो एक डिजिटल थर्मोमीटर हमेशा सारे पेरेंट्स को अपने घर पे रखना चाहिए, और बुखार आए तो हमें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, और ऐसे कुछ भी मेडिसिन तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे इमीडिएट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, विदाउट कंसल्टेशन आपने कुछ स्टार्ट कर दिया। पैरासिटामोल वगैरह आप दे सकते हैं घर पे, पर वो भी उसका आपको डोज अच्छे से पता होना चाहिए। फिर एंटीबायोटिक ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं स्टार्ट करना है ओवर द काउंटर लेके, आपको बच्चे को हॉस्पिटल लाना है, फिर डॉक्टर जैसे बोले आपको वैसे करते जाना।
0: बिल्कुल। इस दरमियान मस्किटो की भी बहुत मात्रा रहती है, और उससे बचने के लिए हमें खासकर ख्याल रखना चाहिए। बरसात में जैसे आपने बताया कि अगर हम वेट कपड़े पहने ज़्यादा देर या फिर बार बार पहनते रहे तो फिर फंगल इन्फेक्शन रहे या फिर स्किन डिसीज होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: स्किन डिजीज जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे वॉल्स वगैरह पे फंगस ग्रोथ होता है, तो हमें जो बच्चे कपड़े पहनते हैं उसके उनको धोते टाइम अच्छे से डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे से सूख जाए, या फिर अगर सूख नहीं रहा है तो हम उसको थोड़ा आयरन करके गर्म करके उसको बच्चों को पहना सकते हैं। और बच्चे अगर बारिश में भीग जाए तो घर में वो ख्याल रखना चाहिए कि इमीडिएट आके वो ड्रेस वो चेंज कर ले, वही अगर हम वेट कपड़ा पहने रहे तो इससे फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस है। और हमारे पास ऐसे आयुर्वेद में ऐसे दवाइयां हैं जो कि हम नहाते टाइम उसको पानी में वो कषाय वगैरह डाल के उससे नहलाते हैं, तो ये सब कुछ है जो नहलाने के पानी में हमने कुछ डिसइंफेक्टेंट ये डाला उससे नहाया, और जब हम नहा के आ रहे तो अच्छे से अपने खुद को अच्छे से बच्चों को पोंछना चाहिए और फिर सूखा कपड़ा पहनाना चाहिए, तो ये सब चीजों का छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
0: बच्चों की पाचन शक्ति मजबूत रखने के लिए कौन से आयुर्वेदिक उपाय उपयोगी पड़ते हैं?
1: बच्चों का पाचन शक्ति के लिए हमारे पास बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, हम जैसे कषाय हो गया ऐसे देते हैं, चूर्ण हो गया, उनका अग्नि इम्प्रूव करने के लिए जो भी मेडिसिन है हमारे पास, तो वो सब कुछ हमारा जो अग्नि बच्चों का जो कम पड़ जाता है, तो हर डिजीज के लिए अलग बोला है, जैसे कि सर्दी खांसी होता है अग्नि कम पड़ता है तो सर्दी खांसी भी होता है, लूज मोशन भी होता है अग्नि के कम होने से, वोमिटिंग होता है, टाइफाइड होता है, तो हर डिजीज में अलग अलग अग्नि को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग मेडिसिन है, और बच्चा स्वस्थ है तो उसके अग्नि को इम्प्रूव करने के लिए अलग मेडिसिन है, अगर अग्नि ठीक है तो उसको कैसे वो मेंटेन करे उसके लिए भी मेडिसिन है, तो ये सब कुछ डिफरेंट मेडिसिन है और डिफरेंट फॉर्मुलेशन में है, चूर्ण में है, काढ़े के फॉर्म में है और सिरप के फॉर्म में है, तो उस हिसाब से आपको एक बार डॉक्टर के पास आके कंसल्टेशन करके मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं।
0: और कौन से ऐसे लक्षण हम बताएंगे कि वो छोड़ के अगर बच्चों में ऐसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए?
1: जैसे कि बच्चे को ऐसे सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दी खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में ज्यादा दर्द होता है या फिर चेस्ट पेन होता है, बुखार जब हम पैरासिटामोल देने के बाद भी बुखार उतरता नहीं है और बार बार बुखार आता है, लूज मोशन आपको बार बार हो रहे हैं या फिर स्टूल में उसको ब्लड दिख रहे हैं, बार बार वोमिटिंग हो रहा है, कुछ भी डिहाइड्रेशन का साइन हो गया जो पेरेंट्स को दिखता है, या फिर बच्चा इनएक्टिव हो रहा है, बच्चा सुस्त पड़ रहा है, खेल नहीं रहा है, तो जब ऐसे कुछ हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं बच्चों में तब पेरेंट्स को इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना चाहिए।
0: आखिर में माता पिता के लिए वर्षा ऋतु में बच्चों की सेहत को लेकर आपका क्या संदेश रहेगा?
1: तो पहले तो जो वर्षा ऋतु है ऐसे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि बारिश हो रही है, सबको पसंद होता है, पर इसमें हम बच्चे हमारे बहुत बीमार पड़ते हैं तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही टेंशन का पीरियड भी रहता है, तो सिर्फ हमें जब इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सिर्फ मेडिसिन दे दिया, मेडिसिन से ठीक हो गया बच्चा, तो ऐसा नहीं है, हमें खाने पीने से लेके खाने का ध्यान रखना चाहिए, पीने का ध्यान रखना चाहिए, उनके हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, और उनके बच्चे जब बाहर जाते हैं उस सब चीजों पे छोटी छोटी चीजों पे वो ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये वर्षा ऋतु तो सबको पसंद है बट इस वर्षा ऋतु में सब लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी बीमार पड़ते हैं, तो ये वर्षा ऋतु जो है वो अपने हेल्थ के साथ अच्छे से एंजॉय करें ऐसे हम बताएंगे। और उसी के साथ साथ जो KLEBM कंकनवाड़ी आयुर्वेदा कॉलेज और हॉस्पिटल में आपका एक मानसून कवच करके आपने एक नया स्टार्ट किया है, उसके बारे में क्या बताएंगे?
1: जैसे कि बच्चे बार बार जब बीमार पड़ते हैं उनका अग्नि कम होता है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, तो उसके लिए हमने एक मॉनसून कवच करके एक प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट किया है, वो पर्सनलाइज्ड प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब जब बच्चा आता है उसके एज के अकॉर्डिंग उसके वेट का उनका प्रकृति का हम असेसमेंट करते हैं कि बच्चा वात है, पित्त है, कफ है, उनका अग्नि कैसा है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, उनका ग्रोथ पैटर्न कैसा है, ये सब कुछ हम बच्चे का एग्जामिन करके उनका असेसमेंट करके, तो पर्सनलाइज्ड मतलब वो बच्चा जो पर्टिकुलर बच्चे को हर बच्चे को सेम मेडिसिन नहीं जाता है, सब बच्चे को जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, हर बच्चा अलग होता है, तो हर बच्चे का इम्यूनिटी जो है वो अलग होता है, डिजीज के अकॉर्डिंग को फाइट करने का जो कैपेसिटी है बच्चों का अलग होता है। तो इसलिए हमने जो प्रकृति असेसमेंट है उसको स्टार्ट किया है और उसके अकॉर्डिंगली हमने सबको सबका मेडिसिन पर्सनलाइज्ड वे में एक किट प्रिपेयर किया है।
0: अच्छा।
1: और वो हम बच्चों को देते हैं ताकि उनका अग्नि इम्प्रूव हो, उनको कुछ भी डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम होता है, लूज मोशन है, डायरिया है, वो सब नहीं हो। बच्चे बार बार रेस्पिरेटरी इलनेस होता है, सर्दी खांसी बुखार होता है, गले में दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है या फिर स्किन डिजीज होता है, उस सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम। और ये जो बच्चे हैं वो जन्म से लेके 18 इयर्स के बच्चों तक सबको हम एसेस कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: और ये सबके लिए है, जो बच्चे बीमार पड़ रहे सिर्फ ऐसा नहीं है, जो बच्चे हेल्दी है वो भी आ सकते हैं, हमसे एडवाइस ले सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम सब कुछ डाइट प्लान बताएंगे, उनको एडवाइस करेंगे, मेडिसिन देंगे। अगर बच्चा हेल्दी है तब भी आना चाहिए ताकि जो कमिंग 2-3 मंथ्स है, जो बारिश जब पीक पे हो तब भी बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए। तो हेल्दी जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, जो बार बार बीमार पड़ते हैं वो भी आ सकते हैं, और जो बीमारी में है अभी तो वो भी आ सकते हैं। और हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन है, वो हम सबको पर्सनलाइज्ड किट दे रहे हैं।
0: तो इसका लाभ लेने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा?
1: इसका लाभ लेने के लिए हमें केली आयुर्वेद हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर जो शाहपुर में है वहाँ पे आना पड़ेगा। मंडे से संडे 7 दिन खुले रहते हैं, 9 to 5, तो संडे भी हमारा हॉलीडे नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग दिस, जो हमारा ये प्रोग्राम है वो संडे भी चालू है।
0: अच्छा।
1: और पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर दोनों ही वर्किंग हैं, तो उनको भी ये सुविधा मिल पाए, तो इसलिए हमने संडे भी खोल रखा है हॉस्पिटल 9 to 5। और ये एक महीने के लिए जुलाई 1 से स्टार्ट हुआ है, 31st तक हम दे रहे हैं।
0: अच्छा।
1: और ये किट अराउंड 200 से 300, जैसे कि हमने कहा कि पर्सनलाइज्ड है तो सबका मेडिसिन अलग अलग जाएगा, अलग अलग अमाउंट में जाएगा, इसलिए वेरी करेगा जो अमाउंट है वो वेरी करेगा, 200 से 300 तक ये कॉस्ट होगा।
0: अच्छा।
1: ओपीडी हमारा 10 and 11 है, काउंटर पे आ सकते हैं, वहां से आपको काउंटर वाले ओपीडी 10 and 11 में पहुंचा देंगे। वहां पे डॉक्टर रहेंगे और वो आपको एसेस करेंगे, आपके बच्चे को एग्जामाइन करेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग हम आपको मेडिसिन देंगे।
0: बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छी सेवा आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं इस दरमियान, तो बच्चों को बीमारी से दूर रखने के लिए आप जिसको मानसून कवच नाम आपने दिया है वो जो किट है, तो इसका अवश्य लाभ लेंगे लोग और बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं।
1: थैंक यू।
0: और आज के इस विषय पे बात करने के लिए आपने टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। डॉक्टर ओजस्विनी रेड्डी हमारे साथ थी, जो केली बीएम कंकनवाड़ी आयुर्वेदा कॉलेज और हॉस्पिटल में कुमार वृत्त और बाल रोग विभाग में कार्यरत। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए, नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुधुनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।
2: डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल नेहरू नगर बेलगाम, 24 आवर्स ऑफ फ्री सर्विसेज फॉर ओपीडी एंड आईपीडी पेशेंट्स, फ्री ईसीजी, फ्री एक्सरे, फ्री सोनोग्राफी एंड फ्री लैब सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द नीडी पेशेंट्स, जनरल ऑपरेशंस, कैटरेक्ट एंड सी सेक्शंस आर डन फ्री ऑफ कॉस्ट, मोर देन 70 लैक्स ऑफ ओपीडी पेशेंट्स एंड 6 लैक्स ऑफ आईपीडी पेशेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड बाय केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल, अराउंड 3 लैक्स ऑफ फ्री सर्जरीज, 85,000 प्लस फ्री डिलीवरीज, 45,000 plus free cataract operations have been conducted. To avail the free services and treatments, please contact 99726-91578 and 77954-35314.
0: केली फार्मसी कॉलेज बेळगाव शैक्षणिक वर्ष 2026 आणि 2027 साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एअरपोर्ट रोड बसवनकुडची बेळगाव येथे अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज नव्या कॅम्पस मध्ये महाविद्यालय स्थलांतरित झाले आहे. उपलब्ध अभ्यासक्रम असा आहे बी फार्म, फार्म डी, एम फार्म, पीएचडी. फार्मसी क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सुवर्ण संधी. महाविद्यालयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये 100 हून अधिक वर्षाची शैक्षणिक परंपरा आणि अनुभव, जगभरातील 3,000 हून अधिक माजी विद्यार्थ्यांचे भक्कम नेटवर्क, बेळगाव विमानतळ रस्त्यावरील सुसज्ज आणि अत्याधुनिक नवा कॅम्पस, परिणामाधारित शिक्षण पद्धती, प्रगत डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम, जागतिक दर्जाचे ग्रंथालय आणि माहिती केंद्र, आधुनिक प्रयोगशाळा व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण सुविधा, आधुनिक वसतिगृहे आणि क्रीडा सुविधा सुद्धा. नॅक A+ ग्रेड आणि NIRF क्रमवारी प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि उत्तम रोजगार संधींना प्राधान्य. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 08312471399 आणि 9740639 7702। वेबसाइट आहे

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारे में हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्वेंटी 90.4 के एल ई कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।